सालार रीम पहुंचे हैं। दागी शिगु और पे में देशियों में कादरी शेंपो गोने शेसुंते कुसंतों गिंगो।